0: 152. Hello.
1: हाँ जी नवीनवीर जी वाहेगुरु जी का खालसा
0: वाहेगुरु जी की फतेह।
1: एक दे वीर जी तुहानू लाना भी मैं पिछले फ्राइडे ना फोन लाया ते वीर जी 20 मिनट फोन चलिया मेरी गल नहीं तुहां कीती मेरे नाल 20 मिनट लगातार ते मुड़के ओ चुक लिया जदों संधु साहब हुणी आए ते उहनां ने चुकिया कार चली गई।
0: चलो कई बार हो जांदा। हां जी
1: चलो कोई ना ते मेरी बेनती है भी तुसी एक ना कोई कविशरी भाई निर्मल सिंह कोई होया कविशर चोला साहब दा कोई दी कविशरी बना दे।
0: ठीक है जी कोशिश कर दे।
1: निर्मल सिंह चोला दा कोई सुना दे ओदी सिंह दी कोई।
0: चलो कर दे ट्राई। ठीक है
1: ओके
0: जी ओके। सो प्रोग्राम है पंजाबी रहा नंबर है अपना 905-673-3337 ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475045

0: हाँ जी बासी साहब सत श्री अकाल जी आ नूं लंघाओ
1: बैठे गुरु घर दे तपस्या
0: सची गल
1: जेठ महीने दा उत्तों सी शिखर दुपहरा लग्या सी सब दुपहरा तक सतगुरां दा चंदू जक तक दे विच फसिया बैठा लो तत्ती ते गुरु अर्जन करे तपस्या ते मान शहीद नू लख लख प्रणाम लख लख प्रणाम नरसिंघा नू विश यादव पाई अपने गुरु नू याद कर लो।

0: Aldi Poncho, 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600.
1: Hello, bro. Kithe hai tu?
2: Main client nu milan ja rahe Soch rahe si Tim Hortons te baith jaiye.
1: Oh, yaar. ये तो ओल्ड स्कूल हो गया हुन ता क्लाइंट मीटिंग्स क्लासी होनी चाहिए ने नजारा रेस्टोरेंट लेके जाओ ननु प्राइवेट बूथ्स ने फुल प्राइवेसी मिलती है फ्री वाईफाई ते लग्जरी एंबियंस बिजनेस मीटिंग भी सेट हो जाती है ते खाना भी बहुत बढ़िया
2: ओहो ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई
1: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी हुने कॉल करो 9054512600 9054512600
3: ओ यार बिजनेस दा माड़ा हाल होया पे कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही
4: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा ता हो ही नहीं
5: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया
6: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता
7: रेडियो आवाज
8: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 तो 10 बजे तक एवरी सैटरडे 10 तो 1 बजे तक प्राइम टाइम ते वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकदे हो 416-518-3200

0: रात आमी छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चले स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर, जेड़े कर देने मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर।
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज, जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने, मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
1: जी हाँ, कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। बतेरी जानकारी ले कॉल करो 905 874 98।

0: जी हाँ, चांदी के फैंसी सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ले चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट।
1: फोर एंड अवलेजर द इंटरसेक्शन पे गुरुद्वारे बाय प्लाजा के बीच सिल्वर हट।
0: 6473393521
1: 6473395 4525 अवलेजर रोड ब्रैम्पटन
0: सिल्वर हट।
2: रात में छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
3: मैं चलिया स्काईडोम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होने ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी कर देने। स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 साल तो तुहाडी सेवा विच।
2: भैया ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
3: कॉल करो 905-874-9878।
4: ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ ਚੱਲੂਗੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲਈ।
5: लेनिया हो या चार, बिजनेस ले जाना होवे या फिर घूमन ले, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट, हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस ले कांटेक्ट करो। एयर टिकट्स, इंश्योरेंस, पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओ भी रीजनेबल प्राइसेस ते। स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने। कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा। कॉल 9056781200।
6: गल हवे रियल एस्टेट सेल परचेज ऑफ बिजनेसेस, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, विल, पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर एफिडेविट दी, ता सोचन दी लोड़ नहीं। इको नाम याद रखो, लॉ ऑफ अमन शर्मा, जो अपने क्लाइंट्स नु देंदे ने एक्सीलेंट लीगल सर्विसेज। अमन शर्मा LLB बैरिस्टर सॉलिसिटर एंड नोटरी पब्लिक, 25 चेरी क्रेस्ट ड्राइव यूनिट 6 ब्रैम्पटन। कॉल 905-913-2355 9059132355।
7: मतलब शायद तुसी स्वीट महल नहीं गए?
8: नहीं मैं मर जा, उत्थे की होने?
7: GTA दा सब तो स्वादला खाना उत्थे ही ता मिलता है। सही सुनिया भई, जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है। जलेबियां, पकौड़े, समोसे, टिक्कियां, व्याह होवे पार्टी या होण किट्टियां, स्वीट महल दी वेज या नॉन वेज आइटम्स ले डाइनिंग करो या केटरिंग करवाओ। इको नंबर घुमाओ 416-679-9091।

0: 32 55 80 ते 98 AK गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो। हो काउंटिंग नहीं, ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने। जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलन गे। हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते। 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 458 0228 905 450 2828। 905 450 2828।
1: This is AM 530 CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at AM530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: There
3: is but one God. Supreme Truth.
2: Karta Purakh.
3: The Creator.
2: Nirupam.
3: Without fear.
2: Nirvair.
3: Without hate.
2: Akal Murat.
3: Omnipresent. Shall worship the eternal truth.

0: 42 75 4275 रैप वेल्डिंग एंड फैब्रिकेशन इंक का नंबर है। ते गलबात करांगे एक बार फिर तो इंश्योरेंस से रिलेटेड है। जे तुसी हजे तक अपनी कोई लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस या तुहाडे बच्चों के आरएसपी प्लान्स बारे जानकारी लेनी है या तुहाडे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स किसी होर कंट्री तो कैनेडा दे विच आ रहे ने उन्हां दे लई सुपर वीजा, विजिटर वीजा, इंश्योरेंस से रिलेटेड तुहाडे कोई सवाल ने, उन्हां दी पॉलिसी करवाउणा चाहुंदे हो, कदों करवाउणी चाहीदी है, इहदे रिलेटेड तुहाडे सवाल होण तां जरूर तुसीं गल्लबात करो उमरप्रीत चावला जी दे नाल, नंबर 6474461616। हां जी मैम, स्वागत एक बार फिर तो।
1: थैंक यू सो मच मनप्रीत जी। सो ऑफकोर्स आप इंश्योरेंस की इंपोर्टेंस दसी है, इंश्योरेंस की आप गल की है, बट जो अपने लिसनर नवे जुड़ते हैं मैं दसदा भी मैं डेजिग्नेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर हाँ। सो फाइनेंशियल एडवाइजर जो आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ना मनप्रीत, दो चीजा आप देखते होंगे भी थोड़े शोर्ट टर्म गोल की है, लॉन्ग टर्म गोल की है। शोर्ट टर्म हो गए आने वाले 10-20 साल के, थोड़े भी मेरी मॉर्गेज पे ऑफ हो जाए, मेरे कोई लोन है वो पे ऑफ हो जाए, बच्चे मेरे छोटे हैं इंडिपेंडेंट हो जाए, तो इस रिस्क को आप टर्म इंश्योरेंस कवर करते हैं। सो लॉन्ग टर्म जो गोल होंगे मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग होगी, थोड़ी इनहेरिटेंस प्लानिंग होगी, क्योंकि जो आप ग्रो कर रहे हैं अज तो 20-30 साल बाद, जो आप अज यंग हाँ तो अफकोर्स एसेट्स भी बनने हैं, साढ़े चो बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी मल्टीपल एसेट्स बना चुके। सो थोड़ा एक चीज समझने की लड़ है, सू कई बार की लगता होंगे भी असं एसेट बनाते असं आने वाली जनरेशन लिए बहुत कुछ करता, लेकिन आने वाली जनरेशन नाल दी नाल एक तुम बहुत वड्डा टैक्स बिल भी पे करके जा रहे हो, मतलब टैक्स बिल दे के जा रहे हो, कल जे कुछ होंगे मतलब जाना सारिया नहीं है तो हस्बैंड वाइफ तो चीजा रोल ओवर हो जाती है, लेकिन जो अगली जनरेशन को जानी है तो एक वड्डा टैक्स टैक्सेबल कॉन्सीक्वेंसिज है। सो उस चीज की प्लानिंग सानू अज करनी पेगी, अज आप थोड़े बिजनेस चो कारपोरेशन चो प्लानिंग कर सकते हैं कि थोड़े टैक्स बिल भी पे हो जाए और थोड़ी रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो जाए और सारा कुछ टैक्स एफिशेंटली होए, मतलब इट्स लाइक यू आर बाइंग डॉलर फॉर टैरिफ। इस सारी प्लानिंग लिए तुम जरूर मेरे नाल गल कर सकते हो, नंबर है जी 6474461616। तुसी मेरी वैबसाइट पे विजिट कर सकते हो uchawla.com ते सोशल मीडिया ते आपां थोड़ी रील्स पांदे रहंदे आ, थोड़ी थोड़ी इनफॉर्मेशन दिंदे रहंदे आ। मैं हमेशा कहंदी आ कि जदों भी तुसी सोशल मीडिया ते कोई रील आंदी आ, कई बार सानूं ट्रस्ट बहुत चंगे लगदे हुंदे आ, कई बार आपां रील्स बारे देखदे हुंदे आ, एक दो तीन चीजां दा ध्यान रख्या करो, एक तां इह आ वी ओह कैनेडियन होणियां चाहीदियां, दूजा कि ओह सोर्स की आ, कोई डेजिग्नेटिड फाइनेंशियल एडवाइजर है या कोई लॉयर वालों आ रही है या वैसे ही किसी ने वो रील पाती और आपां नूं चंगी लगी और आपां उन्हों फॉरवर्ड कर देंदे आ। कोई भी थोड़ा क्वेश्चन है, कोई विल्स है, पावर ऑफ अटर्नीज है, इंश्योरेंस प्लानिंग है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, तुसी ट्रस्ट बनाने का सोच रहे हो, तुसी एस्टेट फ्रीज का सोच रहे हो, जरूर तुसी मेरे नाल गल कर सकते हो, नंबर है जी 6474461616 6474461616। थैंक यू सो मच मनप्रीत
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर तुसी गलबात कर सकते हो, नंबर 6474461616 दे उपर तुहाडी गलबात होएगी उमरप्रीत कौर चावला जी दे नाल। ते लो फिर छोटी जी म्यूजिकल ब्रेक लैंदे आ ते जल्द वापस आवांगे, सुंदरो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।

0: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
1: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
2: जेकर तुसी भी किसे तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते।
0: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381। कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
1: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
2: जेकर तुसी भी किसे तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते।
0: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
3: अकाल डक क्लीनिंग वाले पिछले 40 वर्षों तो साडी कम्युनिटी दी सेवा कर रहे ने। साडी कम्युनिटी दी सब तो पहली कंपनी है डक्ट क्लीनिंग दी। अजकल उन्होंने स्पेशल लगाए ने खास करके ब्रैम्पटन, मिसिसागा, एथोबिको लोकल एरिया दे विच। किसे साइज दा भी घर होवे अप टू 3000 स्क्वायर फीट दे डक्ट क्लीन कराओ। जी हां, ओनली $140। वैसे तो रेगुलर प्राइस $250 विच करदे ने, लेकिन हुण उन्होंने स्पेशल लगाया डक्ट क्लीनिंग सिर्फ ते सिर्फ $140 देवो ते अपने डक्ट क्लीन कराओ। बड़ी ही बढ़िया ढंग नाल डक्ट क्लीन करनगे।